0: सोए नानक सुत केव न उतरे ज्ञान उतारे धोए महला पहला।
1: मन का सुतक लोभ है जेवा सुतक कूड़ अखी सुतक वेखना प्रत्रिया प्रधन रू कन्नी सुकन

सैदा सैदा बल्ले आरे सैदा सैदा बल्ले आरे सचिया सैदा सैदा बल्ले आरे तो दिया गे आरे दस हमारी वाइरी

0: के लोक जय जय करे रे नाम जादू हीरा सगलवार को छाट के घर द्वार द्वार बहन गुला जा सुर दास द्वार हीरा
1: राज करेगा खालसा की रे न कोई और होय से मिल के बचे शरण जो तुर्की सभा अमलेश की कर पूरा पासार डंका बाजा फतेह खाने कलंक होता
0: चतर चक्र चतर चक्र चक्र भुगते स्वयं भव सुमन सदा सब जुगते दुकाल प्रणासी दया स्वरूपे सदांग संगया हरनंद भुते देखते को तेरे सर्व दुनिया भक्त जल नान गुरु गोविंद सिंह से काल भुज सहा
1: दरबार में तेरे दरबार आ
0: सचखंड से निकार लक्ष्मी खड़ी तुरे दरबार आ सब ते कृष्णा दोहरा नान गुरु गोविंद सिंह जी पुनर अवतार
1: जन गुरु ग्रह श्री तन

बिंद के सधैया ताही हीज की बटैया देत मंदरा सदीव पाए रंग फिरत है अंगना दीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छिन्न कह सके तरत है। भूत बन चारी छित छौना सब दूता धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। त्रिण के बछैया धन लोभ के तजैया ते तुगौन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उड़ैया ताहे पंच की बडैया देत बगला बिडाल ब्रिक ध्यान ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तिन्नो जानी पै बखानी ना है असना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी गजैया कहे नभ के उड़ैया सो चिरैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी गजैया कहे आदि सफिरैया तत भूत कह पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भजैया सो चकोर सम्मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाभ

रुको कन्हैया ना कंस को बधैया जा मदूत का हियत है। मूड रूड पीट तना गूढ़ता को भेद पावे बूझत न दाहे जाके रखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरी सार सदा व्रत पाल जम जाल ते रहत है। जोगी जट्टाधारी सती सचे वड्डे ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पै सहत है। न्योली करम जाल

नाचत फिरत मोर बांदर करत गोर दामनी अनेक भाव करियो ही करत है। चंद्रमा शीतल न सुर सित बत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्याद ब्रह्मा से न वेद चारि सनत कुमार।

मुख मन ते न मुंडने हो रायु आदि सको कामना दीन सदा दामना प्रवीन एक भावना बीन कैसे पावे जगदीश को शीस पटकत जाके कान में खजूरा दस मुंड छटकत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ आग गोचरय फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरो न बोक सौ कहा भयो भेड़ जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को भछैया बोल पूज लीज जो सौ कामना दीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कस भेड पर लोक सौ नाचुई करत मूर दादर करत शोर सदा गन घोर गन करुई करत है एक पाए ठंड सदा बन में रहत वृक्ष फूक फूक पाम भूम श्रावक धरत है पाहन अनेक जुग एक ठौर वास करे काग और चील देश देश विचरत है ज्ञान के बिन मादान में नहु जलिन भावना यकीन दिन कैसे कह तरत है जैसे एक सौंगी कहूँ जो किया बेरा के बने कब हूँ संन्यास वेश बन के दिखावई कहूँ बन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ

पंच बार की दर पुकार पर शीत काल कुंचर ओ गदहा अनेक दा पुकार ही गह भयो जो पैगल वत्र लियो कांसी बीच चीर चीर चोरटा कुठारन सो मार ही कहा भयो फांस डार बूढ़ो जड़ गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही डूबे नरक दार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैस ज्ञान को विचार ही ताप के सहित जो पे पाइय तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है जाप के किए जो पे पायत अजाप देव भूतना सदीव तुम्हें।

करता करीम सोई राज करहीम ओई दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही किसेव सब ही कुकुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहु राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मन सब एक बयान एक को भ्रमाव है देवता देव जज गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे होए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक दूर ते अनेक दूर पूरत है दूर के कनु का फिर दूर ही समाएंगे। जैसे एक नाद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहेंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताही ते उपज सब ताही में समाएंगे। केते काछ माछ केते उनको करत भच केते अच वच।

तेज ज्यों तेज में अतेज जैसे तेज लीन ताहि तयो भज सब ताई में समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग बासी कित मदीना मका निवासी कित उदासी के ब्रह्माई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुअप जड़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के बीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दान बड़े बोध हारे बोधक प्रबोध हारे जापसी घास हारे चंदन लगाए हारे चुआचार भूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी गाह हारे गोरन मनाए हारे मड़ी मडली बहारे बीतन लगाए हारे छापसी गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब बज हारे पंडित।

वेखिंग न सतरंग न वितरंग न नेहंग न गेहंग सदेवंग सदा सर्व सर्वत्र सनेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग जो निय छयाद अद्वय अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधंग न रोगंग न शोकंग अभय निर्विखादंग अछेदंग अभेदंग।

दुखं कहूं औखदि रोग के सो को सुखं कहूं देव विद्या कहूं दैत बानी कहूं जा छगंदर में कि नर कहानी कहूं राजसी साध की धाम सी हूं कहूं जोग विद्या धरे ताप सी हूं कहूं रोग रहता कहूं जोग जोग तंग हो भूम की भुगत मैं भरम भुगतंग कहूं देव कन्या कहूं दानवी हूं कहूं जच विद्या धरे मानवी हूं कहूं राजसी हूं कहूं राज कन्या कहूं सृष्टि की

सभा क्या कहूँ देव बानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारंग कहूँ चंद्र रीतंग कहूँ सत्र धारंग कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगुला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज व्याख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारुड़ गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा अक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ शैल चाला धरे छत्र धारी कहूँ राज साजंग।

अभ्यक्त तेज अनुभव प्रकाश अच्छा स्वरूप नाश अंत उठ तेज अनुकूट भंडार दाता दुरंत सर्वं प्रकार अनुभूत तेज अंशित जगात करता सदिव हरता सनात आसन अडोल अनुभूत करम दाता दयाल अनुभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र भ्रात नहीं।

जय करम भरम नहीं जात बात नहीं नेह गे नहीं पितृमात जय नाम थाव नहीं वर्ग व्याद जय रोग सोग नहीं सत्र साध जय द्रास वास नहीं देह नास जय याद अंत नहीं रूप रास जय रोग सोग नहीं जोग जुगत जय द्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अक्ष स्वरूप अखय अभंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षय अतुल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत दुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन वितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई उर्ध पाह देशन भ्रमंत कई उर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्रत उचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेव कई अग्नहोत्र कई पवन हार कई कर्त कूट मृत को आहार कई कर्त साग पै पत्र भच्छ नहीं तदप देव होवत प्रताच्छ कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जगे याद करम कहूँ अग्नहोत्र कहूँ

तीरथ तीरथ परमत्सु वरम कई यज्ञ होत्र कई देव करम कई गर्त वीर विद्या विचार नहीं तदवतास पायतन पार। कहूँ राज रीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्र उचरत सुकरम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान। कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ कर्त जछ गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान। कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक बग निराधार। कई नेह देह कई गेह वास कई ब्रह्मत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्नताप कई जपत ओर्द लटकंत जाप। कई जपत जो कल्पं प्रजंत नहीं तदवतास पायतन अंत कई गर्त कूट विद्या विचार नहीं तदव दिष्ट देखे मुरार। बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु कर।

तब ताप करै नहीं नैक कृपा निध पान परै। जय भूगढ़ धर्म सब तज है एक चित्त कृपा निध को जप है ते या भव सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है। एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एम वेद उचारत सार सुती जो वारस के जस के रस है त्यो

समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अचिज तेज मानी है सदीव सिद्ध शुद्धता।

न दात मात जात है, न बात चिहन वरण है, अधिक से अभेक है, सदीव विश्व भरण है, विश्वंबर विश्वनाथ है, विशेक विश्व भरण है, जिमी जमान के बिग सदीव करम भरम है, अद्वेक है, अवेक है, अलेख नाथ जानिए, सदीव सर्वठोर में विशेख अन्न मानिए, न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई, पुराण यो कुरान नेत नेत कह बतावई, न करम में न धर्म में न भरम में बताइए, अगंज आद देव है कहो सु कैस पाइये, जिमी जमान के बिग समस्त एक ज्योत है, न घाट है न बाट है।

न ने है न गे है न देह को बनाओ है, न छल है न छिद्र है, न छल को मिलाओ है, न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को स्वरूप है, न राग है न रंग है, न रेख है न रूप है, न जंत्र है न मंत्र है, न तंत्र को बनाओ है, न छल है न छिद्र है।

न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न चल है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभ्रम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बली अरूप राग रंग है न द्वैख है न भेक है न काम क्रोध कर्म है न जात है न बात है न चित्र चहन वर्ण है बेअंत है अनंत तेज जानिए अभूम अभिज है सदा।

सर्वखंडन सर्वदंडन सर्वकर्माधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्ववर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमका चले तले मैं जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देवा पार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म

ध्याय ध्याय थके महामन गाए गंधर्व पार, हर हर थके सबे नहीं पाइये तह पार। नारद आदक वेद व्यासक मोहन महान अनंत, ध्याय ध्याय थके सबे कर कोट कष्ट दुरंत। गाय गाय थके गंधर्व नाच पच्र पार, सोत सोत थके महासुर पायो नह पार।

डावरूढ़ वंगे बभर्भ वंगे भुजाफर अंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायत चमके भूखंड दमके अद्वित चमके फुंग फनंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन रम्भक वर्दन दैत जिणंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून किते दामनी दमंगण धुजा फरंगण फणी फुंकारण ज्योति चिते सरधार विपरखण दुष्ट प्रकरखण पुष्ट प्रहरखण दुष्ट मथे जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन भूमा कासल उर्दा थे दामनी प्रहासन सुषम निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर आचन जोज प्रमाचन हृदय नराचन धरम प्रते

चर्चमकारञ्चिच्छुरहारण धूमधुङ्कारण दुरापमथे दाढविवृतन्ते जोगजयन्ते मनुजमथन्ते गूढकथे करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूरज प्रतेजनाष्टभुजे जय जय होसी मैं खासुर मर्दन वरम विनाशन धरम तुझे गुंगुरु गमंगण।

सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम धारे नरक निवारे आद कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंगारोहण बितल तले जय जय हो से सब डोर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटी निवारण धम उदाहरण तेज प्रकार कण धुंध तबे दुख दोग दहंती ज्वाल जयंती आद नाद काद अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितरकण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय ओसी सत्र प्रकरखण आद नीला गाद अभे चंचला चकंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुटा

बार जब लोचन प्रतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहा से सुख सरना से शुभ्र सुभ से दुष्ट क्रसे चंचला प्रांगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आदनाथ का दुर्धंग घंट का बिराजे रुण जुन बाजे भ्रम बाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिक बाजे सुकूप राजे मधुरंग दुर्जन दल दक्ष मंथन रिजे सब न भजे रोहरणंग जय जय ओ सी मै का सुर मर्दन चंड चक्र तन आद गुरंग चाचरी प्रचोदन दुष्ट विरोधन रोष रोदन क्रूर

वी प्रकार खंड सर वर वर खंड दुष्ट प्रकार खंड पितल तले अष्टायद बाहन बोल ले बाण संत बनाहन गूढ़ गते जय जय होसी मैं का सुर मर्दन आद नाद गाद वृते दुख दुख प्रवचन से वक्र संत प्रतक्षण।

रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दंदान वरदन बिडाल वधे सरधार विपरखण दुर्जन दरखण तुलन बरखण धरम दुजे धूमराज विदुंसरण सुनत।

तादुरंत दुख दुख रहत जिह नेत नेत सब भेद कहत। कई ऊच नीच कीनो बना सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जंत जानंत जाहे मन मूड क्यों न सेवंत ताहे। कई मूड पत्र पूजा करंत कई सिद्ध साध सूरत सिवंत कई पलट सूरत सिजदा कर।

कामल कृपाल दुख दुख हरत दादा दयाल अंजन बीन अनवंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साध। जय जात पात नहीं वेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय शत्रु मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल पार। जानी न जाए जय रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेद कहे नाम तास है कवन जात जय शत्रु मित्र नहीं पुत्र भ्रात। करुणा निधान कारण स्वरूप जय चक्र चयन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग बिरहत से दंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग। जल थल महीप बंतन दुरंत जय नेत नेत निज दिन उचरंत पायु न जाय जय पैर पार दीनान दोख दहता उदार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जुकी।

अखंड प्रचंड पारण पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पद मापत वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोक तराज करो रोहान की रोज नटार है। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव अदेव खपे अहं वेव न वेव लख्यो ब्रह्म से ब्रह्माए। वेद पुराण कतेव कुरान हसे बथके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद महापद ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सबोतन नेह विरक्त अगेह अच्छय है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे। काहे को डोलत है तुम रे।

जच भुज सुदानव देव भे उतम सब ही कर ध्यावे भूम काल पदार सादर जच भुजंग सब सरण्यावे पाय सके ने पार प्रपाहु को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सभी खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से सब हु मिल गायो वेद गतेव न भेद लखयो सब हार परे हर हाथ न आयो पाय सके नहीं पार उमापद सिद्ध सनात सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को मन मै जह को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण गतेव कुरान वेद निर्वाण सब बजहारे वेद न पाय सकेयो अन भेद को खेत तह अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग त्यारे याद ना तो अगाध बेगत वेग जप्यो तिन ही कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिर कर वेश तबोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे बहुन्यास करे मुख कारे दीन दयाल काल बजे बिन अंत को

अत्र के चलैया चेत छत्र के धरैया छत्र धार्यो के चलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़िया अवसान के देवैया है कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया और विरुद्ध के मिटैया महाबुद्ध के देवैया महामान हूँ के मान है। ज्ञान हूँ के ज्ञात महाबुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है। पूर्वी न पार पाव हिंगुला हिमालय ध्याव गोर कर दे जी गुण गावे तेरे नाम है। जोगी जोग साधे पौन साधना की देख बांधे आर बक्के आर भी आराध तेरे नाम है। फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे सी जाने पछम के पछम ही पछाने निज काम है। मरहटा मंगेल तेरी मन सो तपस्या कर दीड़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आ क्या मैं चलत है। रो के रोएल मांग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है। गोखा गुण गावे जिन मजीन के शीस न्याय तिप तिथे आये दुख देह के दलत है। जिने तुह दयो तिन पूर्ण प्रताप पायो सर्व धन दाम फल फूल स्यों फलत है। देव देव दान को सुरेश दान वान को महेश गंग दान को अवेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे नदीन साध दीन कहियत है। पाइये न पार तेज पुंज में अपार सर्व पिता के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछे पहुंचाता है चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्ण अवतार किते राम कहियत है। किते ससुरासी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते

छिया कैसी छिरावत छाछ कैसी छतरा नेर छपा कर कैसी छप कालिंद्र के गोल के हंस निश सिहा रूम ही रसी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सुरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के जम्पासी चंदेरी कोट चांदनी सी जाना गढ़ की रत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पूर सी सासी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलब्बा ने हंस कैसी हाजीपुर देख मोहियत है चंदन सी जम्पावती चंद्रमा सी चांद्र गिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकांसी बुलंदाबाद कीरत तिहारी की ओजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृतंगी तेरे गीत गायत है बकरी कंधारी गोर कखरी गर्दे जचारी बौन के आहारी तेरो नाम दियायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाओ सर्व ठौर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रभता भी यंत्र मंत्र देता बिना।

जास सामन होई तू करता करना मैं नाही जा हुकरन होई बलहारी कुदरत बसया तेरा अंत न जाई लखिया रहो जात में जोत जोत में जाता कलकला।

खट करम करंता से भगत भले जन नानक जी जो भावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जीव डियावर ना कोई तू जुग जुग एको।

घट घट के पट पट की जाने जा बुद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देहे अपारा। जब आकर्ष करत हूँ कब हूँ तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत नरहलम जानत भेद भेद अर आलम नरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ताको कर पाह।

काहूं सिमट भयो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयंभव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार असिख संघरो दुष्ट जिते उठव तुत पाता सकल मलेच करो रण घाता जे अस दुज तव शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहे मरे पुरख जौन पग परे तहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार धिया है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे सब काल दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्टन जाय निहर हो ताके ताप तनक मह हर हो।

कृपा करियम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलभिक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को क्षय करता श्री अलदुजा भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बाशद फल।

चौपाई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस हुन तीन कहे जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा।

मोहे मन क्रम बचन बिचार चौपई। मैं नागनय सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हो नह ध्याऊं। कान सुने पहचान नतिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो।

कहाँ जग माहे, जो तह प्रभु को ध्याए है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा। हर हर जिन दुई एक है, व्यभिचार किस नाहे। जलते उपज तरंग ज्यों जल ही बिखै समाहे दोहरा। जब आयस प्रभु को भयो जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुना कब बाच दोहरा। ठाड़ भयो मैं जोर कर बचन कहा सिर न्याय। पंथ चलाता

जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाए। श्री वाहिगुरु जी अरदास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ध्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण धियाई जिस डिठे सब दुख जाए। ते

साहब अजीत सिंह जी, साहिब जुझार सिंह जी, साहिब जोरावर सिंह जी, साहिब फतेह सिंह जी, पंज प्यारियो चाली मुक्तियो सर्व शहीदो मरीदो सचियारियो प्यारियो सब ताई होए सहाय। सलोक महला दूजा, आपे जाने करे आप आपे आने रास, तिसै अगे नानका खले कीचे अरदास। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी। सर्व समूह खालसे जी की अरदास श्री वाहिगुरु जी के पास, जहां जहां गुरु खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत, बिरद की पैज रहे पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी का मन नीवा, मत ऊंची मत पत का राखा आप, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। खालसे जी की देख तेग फतेह, चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहे, धर्म का जयकार खालसा जी साहब बोलो जी। खालसे जी को नाम दान, सखी दान, गुरमत दान, बुद्ध विवेक रहत रिछा दान। खालसे जी को श्री हरिमंदर साहिब, अमृतसर सरोवर जी के स्नान, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दार मिले बोलो जी। श्री अकाल तख्त साहिब जी, संतोख सर जी, बबेक सर जी, राम सर जी, कौल सर जी, तरन तारण जी, तपियाने जी, खडूर जी, गुरु की बौली, श्री गोविंदवाल साहिब जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी। हम जी ननकाने जी, करतारपुर जी, बाबे नानक डेहरे जी, तख्त केसगढ़ साहिब, आनंदपुर जी, कीरतपुर जी, पातालपुर जी, लखनौर जी, चमकौर जी, फतेहगढ़ साहिब जी, दमदमा साहिब जी, धमतान जी, मुकतसर जी, पौंटे जी, तख्त पटना साहिब, हरिमंदर दिल्ली, महशीशगंज, रकाबगंज, बाला साहिब, बंगला साहिब, सत्तों झंडिया साहिबां जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। भगौण साहिब जी, पंजे साहिब जी, कपाल मोचन जी, रणमोचन जी, नानक मत्ते जी, तिलगंजी जी, नानक जीरा जी, शिकारघाट जी, हीराघाट जी, माता साहिब देवां जी, संगत साहिब जी, मालटेकड़ी साहिब जी, बसमत नगर, दमदमा साहिब जी, बंदा घाट जी, नगीना घाट जी, श्री गंगा जी, गोदावरी जी के स्नान दर्शन दार मिले बोलो जी। सर्व समुखालसे जी को नगारे या निशान साहिबां संजगत, तख्त सचखंड श्री अतुर श्री अबचल नगर साहिब जी दे सुख दे दर्शन दार मिले बोलो जी। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो। सत श्री अकाल पुरख जी का खालसा जी साहिब बोलो जी, बोलो जी, बोलो बोलो जी, श्री वाहिगुरु जी। जी गुरु गरीब नवाज अंतरजामी सचे पातशाह जी महाराज, आप जी के अजुर अमृतमयी शब्द वाणी, कीर्तन चौकी सोदर रह रा साहिब जी की अरदास, अखर वादा घाटा भूल चुक माफ करना, बाणी सच खंड विच प्रवान करना, आईया समूह संगतां दी हाजरी प्रवान करना, सिख पढ़दे सुणदे सर्वत लाए बंधौण, गुरु नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वत का भला, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

छत्र चक्र वर्ते चतार चक्र भूते स्वयं सुवं सर्वदा सर्वजुगते युकालं प्रणासे दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंग भूते देव ऋते को फतेह नुसरत में दयाप तज अजनान गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख सहाय दरबार मंत्र दरबारा सच खंड वसे निरंकारा लक्ष्मी खड़ी तुम्हारे दरबारा।

0: दखदार स्वरोग भयंजा सकामना हो तुम करता करना में ना ही जाओ करी ना हो बलहारी कुदत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ जात में जो जोत में जाता कलकला पर फूलया तू सच्चा साहेब सत्सवाने जिन की तीसर पार पया कहो नानक करते किया बाता जो कुछ करना सो सगा महला दूजा
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे खत्रे शब्दं सूर शब्द

कूट बोल करे आहार सुरंदरम का डेरा दुर्नान कुड़िया भरपूर मत ऐट का तेर थोड़ी का हद सूर्य जगत का सा नील वस्त्र पैर होवे परवान।

अंदर पदनाट सुटते रजना उतरना आई मैल जिन पट अंदर बाहर गुदरते बुले संसार ते न हो लगा रब सिद्धिक ने विचार रंग हसे रंग रोवे चुपी कर जाए परवाना किसे कर बस चेनाए दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने को कने